0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की
1: ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र
2: इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में

उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000

0: 1947 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
4: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
1: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे थे कि उत्सव में खास तौर से मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, ढेर सारी तैयारियां होती हैं और किसी किसी के घर भी जाना होता है, सबसे मिलना होता है, लेकिन माहौल जो भी हो सबसे जरूरी है अपने मन का ख्याल रखना क्योंकि अगर आपका मन खुश है, हल्का है तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। One more time.

शाल मलिक होलगड़े की आवाज में आप सुन रहे थे तुम्हारी सुलू फिल्म का ये गीत, वायु ने से लिखा, तनिष्क बागची का संगीत। और हम बात कर रहे थे कि मन जो है इसी तरह से हल्का होकर उड़ना चाहता है, बहुत सारी चीजों को महसूस करना चाहता है। तो अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो उसे बांध कर दिल से ना लगा कर बैठ जाए, क्योंकि इससे तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी दोस्त से आप ये बात साझा कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा आपको जिनसे आप वो बातें कर सकते हैं तो अपनी डायरी में लिख सकते हैं, किसी पेज पर लिख कर फाड़ कर फेंक सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी मन से वो बातें आप निकालेंगे उतना ही जल्दी आपका मन हल्का होगा और आपको जीवन में आनंद आने लगेगा।

सनम रे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शान की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल और जीत गांगुली का संगीत। कुछ इस तरह से छोटे छोटे तमाशे हमारा मन भी करता है, लेकिन मन का माहौल बदलने का ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि गणेश पूजा शुरू हो गई और खास बात इसकी ये है कि आपको झूमने नाचने गाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है और इससे मन बड़ा खुश रहता है।

ट्यूबलाइट फिल्म का ये गीत आपने सुना कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाज थी। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत। और जब हम बात कर रहे हैं मन को हल्का रखने की और अपने जीवन को अच्छा करने की, तो एक सबसे गहन सूत्र है जो हम आपको बता रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ही खुद की आलोचना करते हैं और लगातार करते हैं, लेकिन अगर इससे हमारे अंदर कोई बदलाव हम नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अपनी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी बजाय अपनी जो भी कमियां हैं उन्हें जरूर देखिए, लेकिन लगातार उसके बारे में मत बोलिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि मन इस बात को गांठ बांधता रहता है।

उसे लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं। तो इस तरह से अपने मन को आप ट्रेंड मत कीजिए, बल्कि खुद को इस तरह से तराशिए कि आपके अंदर की कमियां जरूर दूर हों, लेकिन आपका मन ये ना सोचे कि सिर्फ कमियां ही कमियां आपके अंदर है। तो अपने मन को स्वस्थ रखने और खुश रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। फिर देखिए कैसा आपका मन कहता है कि आपका वो फैन हो गया।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म से गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और इसके साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार,
1: दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000।

0: और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाए दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर?
1: हाँ?
0: कितनी गोली है?
1: 6 सरदार,
0: 6 गोली है इसके अंदर, 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके 3 खानों में गोली है, 3 खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में 3 जिंदगी 3 मौत बंद है। देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

0: मेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।
2: तीनों बच गए, ये तीनों तीनों आराम जादों को गोली नहीं।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपीश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे।

0: आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है जीपी सिपी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे ला ला ला ला ला ला ला ला।
1: जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।
1: क्या

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहां से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपी सिप्पी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपी सिप्पी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपी सिप्पी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

0: इसके बाद आई आतिश। सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।
1: तेरी बातों की शराब, तेरे पापों के हिसाब, तेरे स्विस बैंक अकाउंट खोल खोल मोल काउंट, तेरे गली गली यार पूरी गोली बार बार, पहले यारी में मिली फिर बिकी बार बार, तेरी होगी सरकार तेरा होगा दरबार, पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बार, जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी,
2: आपकी सेवा में जनहित में जा रही है।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: మీరింతవరకు గుర్తుకొస్తున్న కార్యక్రమం విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి స్టూడియోలో సమయం సరిగ్గా 12 గంటలు. వార్తల ముఖ్యాంశాలు విందాం.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है. शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है. श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
2: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है. हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा.
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है. श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है. उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया. विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था. उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी. मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा. देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है. हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्र

0: एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
2: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपने सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार। हाँ। और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
2: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
1: हाँ।
2: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
1: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
2: जी।
1: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है आप बताइए।
2: देखिए आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया,
1: भाई पूरा देश
2: आ रहा है,
1: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा, आज उनके आगमन का दिन है।
2: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली। तो वो जो हंसी पूरे साल घर में गूंजती रहती है, हम लाते हैं मंगल कामनाएं कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे खुश रहें, सलामत रहें। गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी कहते ना कि तकलीफों को परेशानियों को हर लेंगे, आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से।
2: ये बात तो
1: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
2: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती में खड़ा होता है या हमारे सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े हाँ। होते हैं, तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
1: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है,

क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की, तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
4: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है।

0: और आती क्या है?
1: हाँ, कहने को आ जाती है, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
2: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा

0: भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्यामिट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा,

0: इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने चार रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी, और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारी सखियों ने भी भेजे हैं
1: जी, बहुत सारे आए हैं
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत सारे
0: सखी।
1: संदेश, और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है, और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एकता, उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा का हम स्वागत करें। इसी भावना के साथ बहुत सारे संदेश
0: हाँ, और हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे श्रोता बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: बिल्कुल, और इसी तरह की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति, और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर ही मिट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: और ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं, और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समाज समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है यशो।

0: श्रोता हैं जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है
1: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्ष उल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला। और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती
0: है। बिल्कुल,
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना, बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
0: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा था। हाँ। अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था कविता का। और

0: रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
0: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बजे जो बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत ने 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में। और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज है।
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसी भी जरूरत हो गई है। लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने, निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है की सूल। और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं। लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
1: चलिए

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर लें, खाने पीने की बात। भाई मोदक की बात अलग हुई लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए, और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है।
3: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
1: हाँ,
3: लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं
1: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
3: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
1: जी।
3: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फेंटना है ना तो फटे ना, इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
1: और
3: है,
1: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
3: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
1: हाँ।
3: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए, और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी जो
1: उसके छेद में अंदर मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
3: तो वो सब बाहर निकल
1: आसानी से निकल जाएगी।
3: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है, तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाएं, पका लीजिए, या तब तक कि जब तक कि कमल ककड़ी थोड़ी
1: नरम ना हो जाए
3: जी। जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना है ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है, तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें, और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना। और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए, आपकी नदरू यखनी तैयार है।
1: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी, इसमें बताया गया है कि

0: कमल ककड़ी एक
1: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते
0: हैं। हाँ, और वहाँ की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। और इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताजी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबालें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था। लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही ना फट जाए, तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा, क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात।
1: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
0: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें

0: का कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन
1: और
0: की बात है।
1: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
0: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो एक गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल।
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए, और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी
0: और चंचल वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह

0: की बातचीत और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।
1: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
2: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
1: जी।
2: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहां पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहां पे वहां पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती है और जो हाउस वाइफ होती है, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
2: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो।
1: जी जी,
2: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी बिल्कुल,
2: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
2: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं, जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है, बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहां पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीफ के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
1: जी

0: आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में. कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बॉटल या दो तीन ग्लास पानी. तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी.
1: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते. हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता
0: जी. सही
1: उसको
0: तरीका.
1: सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है. आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है. प्यास लगने तक राह ना देखिए.
0: बिल्कुल.
1: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए. और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा.
0: जी जी.
1: ना बॉटल से, आप बैठकर पियो खड़े रहकर पियो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो एक दो सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए. कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको एक ग्लास एक घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए. धीरे धीरे ये जरूरी है. गर्म पानी पिए ठंडा पानी पिए वो आपके ऊपर है. आप बैठकर पियो खड़े रह के पियो वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है.
0: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की. एक गाना सुनते हैं यहाँ पर.
1: जी.

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाएं दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी,
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें तो

0: विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं है, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह किए कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात मन ठीक रहता है।
0: हाँ जी।
1: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाने से पहले न तो पानी पीना है, न खाने के दौरान, न खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही

0: कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणाएं हैं, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
1: भूख कम हो जाएगी।
0: आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप उसी को निकाल दो।
1: जी जी,
0: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज का।
1: बिल्कुल,
0: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
1: जी जी जी।
0: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो, तो ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है
0: इसमें? सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी जी,
0: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
0: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए?
0: ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे, और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते।

0: कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
0: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के और पूरी थाली भी, तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुने?
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है, पिया का घर।
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या आईबीएस आईबीडी जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए,
0: जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इश्यू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहां कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर तीन चार बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका
0: जी
1: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान है, वो भी तो
0: जी
1: इस्तेमाल।

0: कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनवा हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं।
1: सावा
0: नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट।
1: जी जी,
0: तो
1: जी।
0: ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने
0: जी।
1: कौन सा?
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
2: एक बार

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि ये कोदो और जो नाम
1: बहुत ज्यादा है। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है।
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद चावल।
0: बिल्कुल,
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें।
0: ब्राउन राइस भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है। अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें, या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं।

0: ये रहता है, उसका
1: अच्छा।
0: सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
1: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में
0: आज भी वही
1: धान को
0: इस्तेमाल।
1: उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं।
0: हाँ,
1: वो
0: हमारे यहाँ
1: मोटा
0: उकड़ा
1: होता है।
0: तांदूल बोलते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं, जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, विटामिन भी होते हैं, वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
1: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना?
0: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहां पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए,
1: ओहो,
0: छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं।
1: जी
0: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबियत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
1: जी
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो हाँ ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे, विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
1: जी जी,
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इश्यू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबियत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
1: जी जी,
0: तो वो
1: जी.
0: इस्तेमाल आप कर सकते हो।
1: जी बिल्कुल, घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला
0: जी
1: जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं, तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है, आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं। बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में
1: जी,
0: पूड़ी और पराठे के रूप में
1: बहुत ज्यादा।
0: अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है, कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत

0: है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और

0: हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
1: जी,
0: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
1: जी
0: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो।
1: खीर घर में बना के।
0: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की। इसकी वजह से उनके टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो
1: बिल्कुल,
0: हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें, तो
0: हाँ,
1: वो भी ठीक नहीं है,
0: ठीक नहीं है।
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके शरीर
0: हाँ,
1: में जा रहा
0: और
1: है जो
0: कुछ लोग
1: हानिकारक
0: ऐसे
1: है।
0: बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
0: जी, चीनी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप फखरुद्दीन के साथ इलाकाई खबरें सुन रहे हैं। पेश है सुर्खियां। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और इनकी अहलिया ने खैरताबाद महागणपति की मूर्ति की खुसूसी पूजा की। गवर्नर ने ख्वाहिश जाहिर की कि गणपति की आशीर्वाद से तमाम अवाम खुशहाल रहे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को विनायक चौथी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो इसके लिए ओहदेदारों को ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन 17 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस पस मंजर में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास मोहन सिंह और खैरताबाद जोन की डीसीपी शिल्पावली ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और ओहदेदारों को मुतअद्दिद हिदायतें दिए। हैदराबाद में बारिश की वार्निंग बरकरार रहने के पेश नज़र ज़िले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इंतजामिया को चौकस रहने और ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के खैरताबाद में 69 फीट गणेश बुलंद मूर्ति पर गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला और उनकी अहलिया ने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि अगरचे गणेश उत्सव की इब्तदा महाराष्ट्र में हुई लेकिन खैरताबाद गणेश की मूर्ति को मुल्क भर में एक खास शनाख्त हासिल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 72 बरसों से यहाँ गणेश की मूर्ति नसब करके उत्सव मनाना एक काबिले ज़िक्र रिवायत है। गवर्नर ने ख्वाहिश जाहिर की कि गणपति की आशीर्वाद से तमाम अवाम खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि विघ्नेश्वर लोगों की जिंदगियों की तमाम रुकावटें दूर करें और रियासत के साथ पूरे मुल्क में अमन खुशहाली अता फरमाएं। इस प्रोग्राम में वजीर पूनम प्रभाकर और मुकामी रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने शिरकत की। खैरताबाद के बड़े गणेश के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुँचने के पेश नज़र पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को गणेश चौथी की मुबारकबाद पेश की।

उन्होंने नेक ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि विघ्नेश्वरा के आशीर्वाद से हर शख्स की जिंदगी की तमाम रुकावटें दूर हो और खुशी, सेहत, खुशहाली और कामयाबी हासिल हो। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर कायम की गई गणेश की मूर्ति के पास अहले खाना के साथ खसूसी पूजा की। गणेश उत्सव के पेश नज़र अकीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए, इसके लिए उन्होंने अहदेदारों को ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने हैदराबाद के साथ

अतिरिक्त बिजली की फराहम की जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सरकारी तौर पर मुनक़िद किए जाने वाले तेलंगाना यौम नजात की तकरीबात में हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। नायब सदर के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम का सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास मोहन सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र और खैरताबाद जोन की डीसीपी शिल्पा वली ने जायजा लिया। उन्होंने तेलंगाना यौम नजात की तकरीबात और नायब सदर के दौरे के पेश नज़र किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम और दीगर इकदाम के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दिए। यौम नजात के मौके पर परेड ग्राउंड में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन खिताब करेंगे। इस तकरीब में गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला, मरकजी वजीर बराए सखाफत व सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत, मरकजी वजीर बराए कोयला व कानकुनी किशन रेड्डी, मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय और बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर रामचंद्र राव शिरकत करेंगे। हैदराबाद में रात भर हुई मूसलाधार बारिश और बारिश का अलर्ट जारी होने के पेश नज़र ज़िले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने GHMC, हाइड्रा, वाटर वर्क्स, पुलिस, महकमे बरखी और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों को मुतअद्दिद हिदायतें जारी किए। वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कहीं भी पानी जमा ना हो और अवाम को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए, इसके लिए पेशगी इकदाम करने के अहकाम दिए। मुतालिका महकमों के अहदेदारों बाहमी तामुल के साथ काम करते हुए सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखें। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा वार्निंग के पेश नज़र वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि हिमायत सागर, उस्मान सागर के नशेबी इलाकों के अलावा मूसी नदी के अतराफ के इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर दोनों आबी ज़खायर लबरेज होने की सूरत हाल पैदा हुई तो गेट खोलकर मूसी नदी में पानी छोड़ने का इम्कान है, इसके लिए पेशगी एहतियाती इकदाम किए जाएंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि ज़रूरत पड़ने पर नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने गणेश मंडपों और गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मकाम पर भी खसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। राजन्ना सिरसिला ज़िले में रात से हुई कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा 32.1 मिलीमीटर बारिश एलेंता कुंटा में रिकॉर्ड की गई। बोइनपल्ली में 18.3, वेमलवाड़ा में 13.6, इल्ला रेड्डी पेट में 13.1 और वेमलवाड़ा रूरल में 12.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अब आप आकाशवाणी हैदराबाद से खबरें सुन रहे हैं। मजीद अपडेट के लिए हैदराबाद के इलाकाई खबरों के शोबे एक्स हैंडल AIR न्यूज़ हैदराबाद को फॉलो करें और एयर न्यूज़ हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब करें। कांग्रेस पार्टी के सिरसिला हलके इंचार्ज के महिंदा रेड्डी ने बताया कि रवा माह के अवाखिर में सिरसिला में वजीर आला रेवंत रेड्डी एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि BC तबके की मर्दमशुमारी और SC जुमराबंदी करने का एजाज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हासिल है। के महिंदा रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हाल ही में असेंबली के गेट के सामने BRS अरकान ने असेंबली की जानिब से किया गया हाई ड्रामा KCR के फार्म हाउस से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक था। हैदराबाद शहर में तामीर किए जाने वाले इंद्रम्मा टावर के LIG मकानात के लकी ड्रा में मुंतखब अहल मुस्तहकीन को इसी हफ्ते सरकारी अलाटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर VP गौतम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 6,660 उम्मीदवारों की फील्ड लेवल जाँच मुकम्मल हो चुकी है और बाकी अहल उम्मीदवारों की जाँच भी इसी हफ्ते मुकम्मल कर ली जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि मकानात की अलाटमेंट का अमल इंतहाई शफाफ तरीके से जारी है। उन्होंने मुस्तहकीन को खबरदार किया कि ब्रोकर्स और दरमियानी अफराद पर भरोसा करके रकम अदा ना करें, वरना वो धोखादही का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने मुस्तहकीन को हिदायत दी कि पहली किस्त की रकम सिर्फ अलाटमेंट लेटर में दर्ज सरकारी बैंक अकाउंट में ही जमा करें। गणेश चतुर्थी के मौके पर जनगांव जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक गरीब खानदान को इंद्रम्मा घर मंजूर करके सहारा दिया। जनगांव म्यूनसिपालिटी के हदूद में वाक़ वीवर्स कॉलोनी के रहने वाली M पद्मा ने इंद्रम्मा स्कीम के तहत दरख्वास्त दी थी। ताहम तकनीकी वजूहात की बिना पर इनका घर मंजूर नहीं हो सका,
इस सूरतहाल से लायल मुस्तहक खानदान ने

0: घर मंजूर होने की उम्मीद में कर्ज लेकर अपनी जाती जमीन पर मकान की बुनियाद तामीर कर ली। बाद अज़ां एम पद्मा ने कलेक्टर से मुलाकात करके अपनी परेशानी से आगाह किया। कलेक्टर ने मामले का जायजा लेने के बाद इंद्रम्मा घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर करके अहकाम जारी कर दिए। जनगांव म्यूनसिपल कमिश्नर राजशेखर रेड्डी ने आज पद्मा के घर पहुंचकर उन्हें मंजूरी के कागजात हवाले किए। महबूबाबाद जिले में अवाम ने अकीदत व एहतराम के साथ गणेश चतुर्थी के मौके पर त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाया। जिले हेडक्वार्टर के अवाम मंडलों और देहातों में मुख्तलिफ शक्लों की गणेश की मूर्तियां नसब करके खसूसी पूजा की गई। सुबह से ही अकीदतमंदों ने गणेश भगवान की पूजा की और मुख्तलिफ नजराने व नियाज पेश किए। कई मुकामात पर खसूसी मंडप कायम करके सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। गणेश चतुर्थी के मौके पर संगारेड्डी के मशहूर और कदीम रेजिनतल सिद्धि विनायका और रुद्राराम गणेश गड्ढा मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है और खसूसी पूजा की जा रही है। बड़ी तादाद में स्वामी के दर्शन के लिए अकीदतमंद कतारों में इंतजार कर रहे हैं। जिले भर में बड़ी तादाद में गणेश मंडप कायम करके गणेश की मूर्तियाँ नसब की गई हैं। और अब आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और इनकी अहलिया ने खैरताबाद महागणपति की मूर्ति की पूजा की और गवर्नर ने ख्वाहिश जाहिर की कि गणपति के आशीर्वाद से तमाम अवाम खुशहाल रहे। वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को विनायक चौथी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो इसके लिए अहदेदारों को ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन 17 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस पस मंजर में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट ने अहदेदारों के साथ मीटिंग की और हैदराबाद में बारिश की वार्निंग बरकरार रहने के पेश नज़र जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इंतजाम का जायजा लिया। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाका
1: के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने

ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तज्जिया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पनबिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहिरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क्यादत का बखूबी मुशाहिदा किया, क्योंकि ज्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये समझना जरूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनाकिद हुई जब दुनिया में इख्तलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाज़ात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन व सलामती, इस्तेहकाम, तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत, आलमी तिजारत में आसानी, सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ के हवाले से एक मुश्तरक बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए, जिनमें 11 रुकन ममालिक, 10 शराकत दार ममालिक, 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैनुल अक्वामी तंजीमें शामिल थीं। वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाज तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क्यादत की तारीफ की है। भारत की सदारत में मुनाकिद हुई दो रोज़ा सरबरा मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ कौमी राजधानी में इख्ताम पजीर हुई। इस दौरान हफ्ते के रोज़ ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर नई दिल्ली ऐलामिया 2026 अपनाया। इस सरबरा मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राज़ील और मुत्तहदा अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेज़बानी की और इत्तफाक राय पर पहुंचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामी पर रुकन ममालिक को आमादा करने पर कामयाब रहा। चीन के सरकारी मीडिया और क़यादत ने नई दिल्ली आलामी को आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में आला दर्जे के इश्तराक और यकजहती से मुतालिक मुस्बत कदम करार दिया। रूस ने आलामी पर मास्को के अज़्म को दोहराते हुए ब्रिक्स हलीफ मुल्कों के साथ शमूलियाती और तरक्की पर मरकूज साझेदारी के तई अहदबस्तगी का इजहार किया। अमरीका में मुकीम तजिया निगार ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की भारत की मेज़बानी को कामयाब करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली आलामी से मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल मुल्कों के दरमियान इत्तफाक राय कायम करने की नई दिल्ली की सलाहियत की अक्कासी होती है। न्यूज डेस्क से स्वाति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा बुध के रोज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमीकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरक तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और सेमी करते हैं। ये प्रोग्राम आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अहम जरिया है, ताकि ताउन, जिदत तराजी, मैन्युफैक्चरिंग, सरमायाकारी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करने को फ़रोग दिया जा सके। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहसे और हिकमत अमली से मुतालिक अहम इजलास होंगे। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उभरते हुए रुझानात और अहम मौजूआत, खसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार, दो आदमी थे।
1: दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों,

0: अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
1: पूरे 50,000।
0: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? कितनी गोली है?
2: 6 सरदार,
0: 6 गोली, 6 गोली है इसके अंदर, 6 गोली और आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है ये। अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसके 3 खानों में गोली है, 3 खाली। अब हम इसको घुमाए दिए, अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में 3 जिंदगी 3 मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।
2: तीनों बच गए, ये तीनों

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है जीपी सिप्पी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपीसीपी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

इसके बाद आई आतिश। सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।

0: की सेवा में जनहित में जा रही है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।